वाइच गुड आफ्टरनून एंड वेलकम शू वेरी नाइस है एंड ऑल लिसनर को सलाम स्पेशल सलाम टू बिशाम लिसनर आई एम गुलाले फ्रॉम टांग जिंदगी सी चू चूड़ा की सॉन्ग प्ले करो बाई आई एम गुलाले खड़ी रे मेहरबानी शुक्रिया

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन्फ यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
1: कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू।

Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the studio listeners of Global FM 91 Dera Ismail Khan, Radio Pegham 97.4 Paharpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जनाब दोपहर के चार बज चुके हैं जनाब और चार बजते ही जनाब आपको ये आवाज सुनाई देती है आपके शहर आपके इलाके के सबसे मशहूर एफएम यानी कि डेरा इस्माइल खान में ग्लोबल एफएम 91 पहाड़पुर में रेडियो पैगाम और टाक में रेडियो अमन 88.4 जनाब तीन स्टेशन और एक आवाज और ये आवाज है केसर नेचुरल पाकिस्तान की ये आवाज है खलील ताबे शवान की ये आवाज है सेहत की ये आवाज है खूबसूरती की और ये आवाज है शिफा की जनाब हर रोज की तरह आज भी केसन के टी टाइम शो जी जनाब वो वक्त जो कि चाय पीने का होता है वो वक्त जो खुद को बेदार करने का होता है और वो वक्त जब अपनी थकावट को आप नींद के हवाले करके बिल्कुल जी इस वक्त फ्रेश हो चुके हैं जनाब बिल्कुल जी फ्रेश हो चुके होंगे और बिल्कुल ये वक्त होता है फिर से उठने का और दिन के बचे कुचे जो काम होते हैं ना उनको फिर से करने का तो जनाब चाय के कप के साथ ढेर सारा फन आज मिलने वाला है आपको हमारे इस शो में तो जिसका नाम है केसन टी टाइम और ये एक घंटा तो आपको ऐसे चुटकी में गुजर जाता है जी जनाब चुटकी में गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता मुझे भी और यकीनी बात है कि आपको भी पता नहीं चलता होगा और ये घंटा बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तो जनाब को एक मिनट भी आपने जाया नहीं करना हमारे साथ लगे रहना है क्योंकि जनाब बड़ी मुश्किल से हमने आवाज आप तक पहुंचाई है और हमने कहा कि हमारी कंपनी की आवाज केसन की आवाज शिफा की आवाज सेहत की आवाज खूबसूरती की आवाज बिल्कुल जनाब हर शहर तक पहुंचनी चाहिए हर इलाके तक पहुंचनी चाहिए और कोई भी बंदा जो है वो सेहत से महरूम ना रहे शिफा से महरूम ना रहे और खूबसूरती से महरूम ना रहे और जनाब हमारा स्लोगन यही है कि जनाब हर एक को प्यारा लगना चाहिए और प्यारा क्यों लगना चाहिए क्योंकि जनाब ये आपका फंडामेंटल राइट है ये आपका प्राइमरी राइट है कि आप हमेशा प्यारे दिखें आप हमेशा प्यारे लगे ना मुझे कहते हैं खलील ताबे शमान और मुझे सुनने वाले इन तीनों रेडियो स्टेशन के ऊपर तमाम गर्ल्स एंड बॉयज अंकल एंड आंटीज चाचा एंड चाचीज मामा एंड मामीज दादा एंड दादीज नाना एंड नानीज ऑफ कोर्स जी जनाब बूढ़े भी सुनते हैं बड़े भी सुनते हैं छोटे भी सुनते हैं तो सबको जनाब खलील ताबे शमान के सलाम ढेर सारी मोहब्बतें आप सभी के नाम सलामती की तमाम दर्द हुए आप साहब के नाम और नेक तमन्नाएं भी मेरे तमाम लिसनर यूजर और फैंस के नाम

जी जी ना, मुझे कहते हैं खलील ताबे जमान, और ये आप अपने एफएम, अपने इलाके के एफएम के ऊपर हमारे ट्रांसमिशन, हमारा शो सुन रहे हैं केसन टी टाइम, और केसन नेचुरल पाकिस्तान का पैगाम हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और केसन का जो पैगाम है, यकीन कीजिए अगर आप हमारा पैगाम तवज्जो से सुनते हैं, हमारी बातें आप बिल्कुल जी उनको सीरियस लेते हैं, ठीक है जनाब, और उनके मुताबिक हमारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने साथ भला करेंगे, हमारे साथ तो भला ये होगा कि हमारी कंपनी आपके घर में पहुंच जाएगी, हमारी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने लग जाएंगे। वो तो एक अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने टांग का नया एरिया ओपन किया हुआ है, तो डेफिनेटली उन लोगों को हमें तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है, और उनका शुक्रिया भी कि वो ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारी बातों को लबैक करते हुए हमारे केसन के जो है प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मर्दों के अंदर वैसे तो हम हर रोज खवातीन की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि जनाब बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे खवातीन के हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट जो हमारी खास तौर पर मर्दों की खूबसूरती में इजाफा करता है, मर्दों की इज्जत बढ़ाता है, मर्दों को शर्मिंदगी से बचाता है, शर्मिंदगी, ठीक है जनाब, शर्मिंदगी के लफ्ज अब मेरे मुंह से निकल गया, शर्मिंदगी बहुत सारे मौकों के ऊपर जो है इंसान को उठानी पड़ती है, बाजू का शर्मिंदगी के बाद जो है बहुत मुश्किल होता है कि आप रिकवर कर पाए, लेकिन ये शर्मिंदगी जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ मर्दों के हवाले से, कि गंजपन, यानी कि ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है जब बंदा जो है अभी जवान भी है, या जवान सेकंड हैंड जवानी में पहुंच चुका है और वो गंजा होना शुरू हो गया है, या गंजा हो चुका है, तो यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है, यकीन करें। अगर ये शर्मिंदगी ना होती तो लोग विज्ञान ना लगाते, ये शर्मिंदगी अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये कौन सी शर्मिंदगी है, तो भाई वाकई ये शर्मिंदगी होती है। ये शर्मिंदा होने से बचने के लिए लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, लाख लाख रुपया लगाते हैं और अपने सर के ऊपर बाल लगवाते हैं, ठीक है जनाब, विगे खरीदते हैं, ठीक है जनाब, और विग कभी तूफान आ जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए कि विग उतर जाए तो फिर और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से शर्मिंदगी से बचने के लिए लोग जो है टोपियों का इस्तेमाल करते हैं, कैप्स का इस्तेमाल करते हैं, हैट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो मसला है जनाब गंजपन का, जिसे हम कहते हैं जनाब ये बंदा गंजा हो गया है, बालों से हाथ जो है वो धो बैठा है, तो उसकी वजूहात तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है जनाब। बालों का कमजोर होना जो होता है, बाल जब आपके कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, तब गिरेंगे, ठीक है जनाब। जब आपके सर के ऊपर खुश्की है, स्कैल्प जो खोपड़ी है आपकी, उसके अंदर खुश्की है, ठीक है जनाब, तो तब भी जनाब आपके बाल जो है गिरेंगे। बाज़ औक़ात जो है मौरूसी भी होता है, जेनेटिकली होता है कि जनाब खानदान के अंदर बड़ों के बाल गिरते हैं, तो वो गिरते ही रहते हैं, ठीक है जनाब। कुछ ये भी होता है, कुछ स्ट्रेस की वजह से भी होता है, प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, डिप्रेशन भी उसी चीज़ का हिस्सा है, डिप्रेशन, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनके बाल भी गिरते हैं, जो लोग नींद पूरी नहीं करते हैं, ठीक है जनाब, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है जनाब, वो भी बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं, ठीक है जनाब। आप ऐसे नौजवानों को देखें ना जो अभी जवान है और गंजे होने लगे, उनसे आप उनकी तरतीब पूछे ना कि भाई लाइफ कैसे गुजर रही है, तो वो बंदा रात को 4 बजे सोता होगा जिसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है जनाब। आप उसे पूछेंगे भाई कोई टेंशन है, तो वो बोलेंगे टेंशन है जी, मैं तो पिछले 10 साल से टेंशन से निकल नहीं रहा। अच्छा, ये सारी वो बातें हैं भाई जो हम आपको बताते हैं कि भाई इनको ओवरकम करें, इनको थोड़ा सा कंट्रोल में करें, तो आपका ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। लेकिन लोग नहीं कर पाते, तो भाई उनका भी सोल्यूशन भी होता है। फिर लोग कहते हैं, बाज लोग जो है सूट लेकर दर्जी को दे देते हैं कि भाई सी दें, बाज लोग कहते हैं नहीं इतना टाइम नहीं है, रेडीमेड लेना है, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, तो रेडीमेड सोल्यूशन क्या होता है इन मसाइल से बचने का जनाब, तो वो आपके पास एक अच्छा ऑयल है, ठीक है जनाब। अच्छा, जब आप केसन की जो प्रोडक्ट भी आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलती है ना, वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो गाइडलाइंस होती हैं, जो इस दौर की गाइडलाइंस हैं, जो FDA बोल रहा होता है, ठीक है जनाब, जो ड्रैप कहता है, जो डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशन हैं जो बताते हैं कि भाई किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी चीज, कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये जो गंजपन होता है ना, गंजा हो जाना, इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। बाज लोग ये करते हैं कि जनाब ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, नए बाल लगवा लेते हैं, ठीक है जनाब, और 1 लाख का खर्चा होता है तकरीबन। दूसरा होता है PRP, एक ऑपरेशनल एक सर्जिकल ऑपरेशन है, वो करवाते हैं, उससे भी हो जाता है। तीसरा जो है विग वगैरह लगाते हैं, लेकिन नेचुरल वे क्या है, मेडिसिन भी है, कुछ आ गई है मेडिसिन,
जिससे आपका जो है स्प्रे करने से या टैबलेट खाने से आपका हेयर ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब केसन के पास इन प्रॉब्लम के लिए क्या है? देखिए, इसके ऊपर कंपनियां इतने लाखों की चीजें लॉन्च करके बैठी हुई हैं। ये इतना बड़ा मसला है, गंजपन जो है ना, इतना बड़ा मसला है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई, अगर आप गंजे हैं ना, और अगर आप 17 ग्रेड में भी हैं, तो आपको लड़की कोई नहीं देगा। ठीक है जनाब, ये इतना बड़ा मैटर है। गंजा जो होता है ना, वो इतना बड़ा मैटर होता है कि आप 17 ग्रेड में भी हैं, तो आपको कोई लड़की नहीं देगा अगर आप गंजे हैं। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, और इसको भाई, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। ठीक है जनाब, इसके सोल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन सस्ता सोल्यूशन केसन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर आपके बाल अभी गिरे हैं, ये नहीं है कि जनाब आपके बाल गिर गए और उसके बाद जो है वो आपका सर के ऊपर चमक आ गई है, चटियल मैदान बन गया है, कोई फॉलिकल्स जो है, यानी कि सुराख, बालों की जो सुराख होते हैं वो खत्म हो गए, उसके बाद जो है बहुत मुश्किल होता है कि बाल फिर से निकले। ठीक है जनाब, फिर बहुत मुश्किल होता है कि बाल निकले। फिर उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए, पीआरपी करवानी चाहिए, या कुछ और प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये जो स्टेज होती है कि जिसमें आपके बाल गिर गए हैं और आपको, आप हाथ फिरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि बाल तो हैं लेकिन बाल है नहीं बेसिकली। ठीक है, यानी कि जगह ऐसी है कि आपको फील होता है कि हल्के हल्के से बाल हैं, बेबी हेयर मौजूद हैं, लेकिन वो जगह गंजी हो गई है। तो 100% हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आपकी ये सिचुएशन है, अगर आप इस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं कि आपके बाल तो गिर गए हैं लेकिन अभी आपके माथे के ऊपर या सर के ऊपर वो चमकदार रोशनी नहीं पड़ी है, चटियल मैदान नहीं बना है, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि केसन का जो हेयर ऑयल है, जिसको हम कहते हैं केसन हेयर ऑयल, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, 2.5 से 3 माह के अंदर आपके बाल निकलेंगे। 2 से 3 महीने अपने माइंड के अंदर रखें, पहले महीने के अंदर ही आपको बेबी हेयर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जनाब, छोटे छोटे बाल वहां पर जहां पर आपके बाल गिर चुके हैं मुकम्मल तौर पर और नहीं निकल रहे, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है जनाब, और सिर्फ ट्रांसप्लांट कराने से पहले, पीआरपी कराने से पहले, बड़े प्रोसीजर कराने से पहले, आप 2 से 3 माह केसन का हेयर ऑयल इस्तेमाल करें। ये वाहिद ऑयल है जिसके ऊपर हमने 3 चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? एंटी हेयर फॉल, रीग्रोथ एंड ब्लैक शाइन। ये 3 लफ्ज हैं और 3 कहानियां हैं कि भाई ये आपका गिरते हुए बालों को रोकेगा, नए बाल उगाएगा। रीग्रोथ बोलते हैं नए बालों को, जब आपके नए बाल निकलते हैं ना, इसको बोलते हैं रीग्रोथ। तो हम कहते हैं कि मार्केट में इस वक्त अगर कोई रीग्रो करने वाला कोई ऑयल मौजूद है, रीग्रोथ करने वाला जो आपके बालों को फिर से उगा सकता है, तो वो केसन 17 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल ऑयल है। अच्छा, आप कहेंगे इतना बड़ा दावा, तो इतना बड़ा दावा हम तब कर रहे हैं जब हमारे ऑयल के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है, इसके अंदर हमने कुछ ऐसे अज्जा को शामिल किया है जो वाकई आपके स्कैल्प के ऊपर काम करते हुए आपके फिर से नए बाल उगाता है।

0: जी जनाब, मुझे मुझे लोगों ने चाय नहीं पीनी देनी है ना जनाब। उन्होंने कहा नहीं भी, हम तो कॉल करेंगे जनाब। फर्स्ट कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं हमें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, शाहजहान भाई आ चुके हैं हमारे साथ। कैसे हैं मोहतरम? ठीक है आप?
1: ठीक ठाक सर जी, खरिया से
0: प्रोग्राम सुन रहे पे। मौसम चंगा है तुम्हारे पास? है
1: माशाल्लाह सर, बदल बड़े खड़े, बस हवा भी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी घुल पाई है।
0: अच्छा बात, लगता पे कि शाम तक मौसम अच्छा थी वैसे है जी।
1: जी जी इंशाल्लाह अच्छा थी वैसे।
0: अच्छा प्रोग्राम सुनते पे वैसे ही ऐसा आते हैं कि सारा जरा आयल है केसन, और सिर्फ बालों को लंबा घना खूबसूरत नहीं करना, बल्कि तुम्हारे वाल अगर ढह गए नवे वाल भी जमा के देसी तो ढाई को त्रे महीना के बीच अगर रेगुलर इस्तेमाल करे सो तो
1: बिल्कुल बिल्कुल ये गल है सर। कोई शाकी को नहीं कटता वाला गुवा की। दूसरी गल है कि जिले कंघे की लोहे तो उसी ने खाली हाथ ना लियो करो तो सही कट दें जी तकड़ा हो।
0: हाय हाय हाय, इवें यानी कि नरम मुलायम ते सिल्की ते चमकदार वाल थी वेन किसन ऑयल नाल है जी।
1: जी जी जी बिल्कुल ये गल है सर। ते ए साडी एक दरखास्त है सर।
0: जी जी हुक्म सही, हुक्म करो दरखास्त ना
1: करे। जी तेरे तो सारे थकी नहीं बनाई अपना मैदे वास्ते।
0: ठीक है जी,
1: इसे लॉन्च करो सर कोई दुकान देते।
0: अच्छा जी, अच्छा लिसनर सुन रहे हैं इस वक्त, हमने एक तो हमारी ये वेट कम पेट कम फकी है ना, एक हमने अभी कुछ सैंपल दिए हैं लोगों को मैदे के लिए भी हाजमा कंट्रोल फकी। हमारा सिरप ऑलरेडी मौजूद है हाजमे का, लेकिन हमने एक बहुत ही टॉप क्वालिटी की वो फकी भी लॉन्च करनी है, लेकिन पहले हम टेस्ट करवाते हैं लोगों को। तो इनके पास भी सैंपल गए थे, तो कैसा लगी आपको वो फकी हमारी हाजमे वाली?
1: बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा तो इसे वास्ते आ गया कि लॉन्च किया बने के लोगों को बहुत तकलीफ है मैं दिया नहीं थी इन्हें ना इंशाल्लाह अगर रहती इस्तेमाल करें चौथी बार ओके ना होसेन।
0: ओके होसेन, यानी कि तुसा माशाल्लाह हाजमा कंट्रोल सिरप ही सारे नाल मौजूद है ते असा फकी भी ट्रायल ते बढ़ाई है ते असा के सही देखो इकु ट्राई करें ते लोगों को एक कितनी चंगी लगती है। ता ओ सही हाल तक असा लॉन्च ते नहीं कीती, लेकिन इंशाल्लाह जिवें तोरा फीडबैक सानू आंदा पे जाने जे लोगों को सैंपल हुंदे दित्ते होए ते ओ तो बड़े मुतमईन नहीं, यकीन करो बड़े ही मुतमईन नहीं। ते इंशाल्लाह कोशिश करेसो कि जल्द तो जल्द हाजमा सिरप दे नाल नाल हाजमे वाली फकी भी आ वजे। ठीक है सही,
1: बहुत मेहरबानी सर। सारे दोस्तों को जितने सुनते हैं सारा सलाम।
0: सारे को सलाम हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जी जनाब, हमारे साथ शाहजहान मेंबर रेडियो पैगाम से मैं सुन रहे हैं, और हमारे हमारे जनाब यकीन कीजिए केसन के सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये नई प्रोडक्ट भी हम इनको जो हमारे रेगुलर यूजर होते हैं तो हम उनको जरूर भेजते होते हैं जो हमारे लिंक में होते हैं रबते में होते हैं, क्योंकि आपकी तसली के बाद ही हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अच्छा जी, एक तो हमारी वजन कम करने वाली जो है हर्बल फार्मूला फक्की है ना वो तो चल रही है, वजन बढ़ाने वाले भी हम लॉन्च करने वाले हैं, वजन बढ़ाने वाले भी। ठीक है जनाब, तो वो भी आपको बताएंगे, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं अभी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जनाब जनाब अब्दुल हादी गदा शहबाज कुल सारे नाल मौजूद हैं। ऐसे
1: जी जी हमारी बखिया से ठीक हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए अच्छे हैं जनाब? मौसम का सुनाए, मौसम कैसा है आपकी तरफ?
1: बड़ी
0: बड़ी खड़ी है जी। मैं क्या आज तो कोई नवा मसला सा दस है कि बहुत सारे लोग जल्दी गंजे थी वेन यार, गंजा बंदा तो मोटा ही सोना नहीं होता। आज मैं उस गाल करे दे पैसे के मोटा बंदा सोना बिल्कुल नहीं लगता।
1: गंजा तो बहुत गंदा लगता है खलील भाई।
0: गंजा बंदा अपने आप को शर्मिंदा थी वदा होने ना, गंजा बंदा जरा होता है। हादी अब्दुल हादी,
1: हेलो खलील भाई।
0: जी जी
1: खलील भाई।
0: जी जी
1: आवाज तेरी बहुत फट
0: गई है। अच्छा हुंड सोनी पे आवाज मेरी?
1: जी जी हूं आनी पई है।
0: मैं कैसे ही गंजा बंदा अपने आप को शर्मिंदा थी आवाज हो रहा है, इन्हें है कि नहीं? अच्छा जनाब आवाज आज इनको बहुत ज्यादा कट रही है, सिग्नल का इशू होता है। तो भाई जोंग का नंबर भी हमारा है और उसके ऊपर भी कॉल कर सकते हैं अगर आप वो तकलीफ हो टेलनार के ऊपर, तो हमारा नंबर आप नोट कर लें 03-44-936-3366। ठीक है जनाब, ये हमारा टेलनार का नंबर है, जोंग का 0313 798-4547 इसके ऊपर भी आप डायल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो भाई ऐसे लोग जो गंजपन की वजह से भी परेशान हैं और गंजे हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो भाई और मसले आपके बहुत सारे होंगे। ठीक है जनाब, महंगाई है, नौकरियां नहीं है और भी बहुत सारे मसले हैं, तो आप उन मसलों को संभालें। ये वाला जो मसला है ना, ये आप केसन को दे दें। ये जो गंजपन वाला मसला है, ये जो बाल गिरने का मसला है, अगर आप ये समझते हैं कि भाई जब आप अपने दुख गिनते हैं, जब आप अपने गम गिनते हैं, तो उसमें ये भी एक गम होता है कि आप गंजे हो चुके हैं या आप गंजे हो रहे हैं या आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, तो भाई आप ये टेंशन हमारे हवाले कर दें। ठीक है जनाब, ये टेंशन केसन हेयर ऑयल को घर में लाकर खत्म कर दें आप अपनी। ठीक है जनाब, जैसे इस्तेमाल शुरू करेंगे आपको पहले हफ्ते के अंदर ही पता चलेगा कि आपके बाल गिरने वाले जो हैं वो रुक गए हैं। अल्लाह को जान देनी है भाई, इतने सारे लोग हमारी केसन शॉप पर आते हैं और आके हमें बताते हैं भाई अगर आपका ऑयल ना मिला होता ना तो आज तक हम मुकम्मल तौर पर गंजे हो चुके हो। तो ये तो ऑयल मिल गया कि हमारा हेयर फॉल रुक गया और नए बाल आ गए, फिर से हरियाली आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भैया के कॉल काट पे यही मैं के
0: हां बिल्कुल मैं कैसे आज ऐसा एक मामला चाहती बैठे गंजे लोगों ला।
1: जी जी हां,
0: ता गंजा तो बिल्कुल ही सोना नहीं होता बंदा, क्यों होता है गंजा सोना?
1: बहुत गंदा लगता भी मैं रही संगति है तो गंजा है ते बहुत गंदा लगता है ना।
0: अच्छा
1: मैं क्यों वो पूछता पिया यो गंज पर गिर वजन वाला वो गंजे थी वजन वास्तव भी जमाने
0: उंदे तो सिर तो ते हाथ फिरे सो एक दफा। ठीक है, अगर चटियाल मैदान है ना उंदा सिर उका ते चमका खड़ा वात न निक सिनवाल। ठीक है,
1: अच्छा खन्ना ना ये पास पास ते इन को लेके ने आधी ता पास
0: ना बस बात आ वैसे उंदे वाल बिल्कुल अपनी तसल्ली ते उनो सारा तेल गिनवा दे ओके सन हेयर ऑयल। ठीक है, हेयर ऑयल मंगवे ने वा पांच मिनट तक मालिश करो काको को बह के पांच मिनट तक मालिश करनी है इन तेल दी। ठीक है, एक दो बार छोड़ के हफ्ते त्रे रिवार मालिश करो ते बात इंशाल्लाह वालों को निकलता देखो अपने सिर को।
1: इंशाल्लाह रेडी मंगवे ने वा तो आपको दुआ करे सुरा ने
0: इंशाल्लाह पहले मंगवे सो बिस्मिल्लाह करे सो तो उनके बाद इंशाल्लाह तो रिजल्ट मिलना शुरू थी वैसे। ठीक है अब्दुल हादी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई, सारे लिसना को सलाम किया।
0: ओके जनाब, सारे लिसना को सलाम। और अब्दुल हादी गरा शहबाज से हमारे साथ मौजूद है। तो भाई अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ये मसला है कि गंजपन जो है वाजे नजर आता है और उसके सर के ऊपर बालों की कमी है, तो भाई ढेर सारे बाल उस बंदे के सर के ऊपर केसन हेयर ऑयल जो है वो उगा सकता है।

0: अपने घर से प्रोग्राम कर रही हूँ,
1: घर से प्रोग्राम कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये आपका इलाका, आपका अपना इलाका है। मौसम अच्छा है आपकी तरफ भी? क्या पेशन कोई है आपकी, शाम तक बारिश होगी या नहीं, बस ऐसे ये पैंपर पहन कर बदल चले जाएंगे यहाँ से?
0: जैसे अल्लाह का हुक्म होगा मुझे क्या
1: जैसे अल्लाह का हुक्म होगा हम क्या कर सकते हैं जी, जैसे हुक्म होगा।
0: लोग तो कहते हैं आपने प्रोग्राम शुरू में कहा ना कि गंजा अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं कुछ लोग ना जो मन गंजा होता है ना तो वक्त की अलामत होती है।
1: झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं लोग। ये दिल को तसल्ली देने के लिए वो कहता है कि यार आप गंजे तो हो गए हैं, साथ में कोई ऐसी चीज लगाएं कि लोग दूर ना जाएं हमसे।
0: ये झूठ है, इंसान खुद ना करे तो कैसे वो कुछ हो सकता है?
1: नहीं, ऐसा थोड़ी है कि जो गंजा होगा वो किस्मत वाला होगा। ऐसे इतने ज्यादा गंजे आप देखें जो बेचारे मांग रहे होते हैं जी, फिर तो उनको मांगना नहीं चाहिए, फकीर बने होते हैं ये। ऐसे लोगों ने कहा हुआ कि चलो जी, अगर किसी का रिश्ता ना हो रहा हो ना तो उसे बोलो भाई किस्मत वाले के बाल गिरते हैं तो हो सकता है उसका उस बेचारे का रिश्ता हो जाए। तो ये ऐसे खाम ख्याली है भाई, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है? लेकिन ये आयल बहुत बेस्ट है अगर कोई ऐसा बंदा है। हाँ, इस तरह आपने तो अपने बालों को लंबा खूबसूरत बनाने के लिए किया होगा ना, लेकिन किसी मर्द को दें, अगर आपको याद हो हमारी एक लिसनर होती थी पिंकी, पिंकी भाभी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पिंकी भाभी,
1: यकीन करें वो एक दिन अपने मियां को लेकर हमारे शॉप के ऊपर आ गई थी मुबारकी देने के लिए कि भाई ये मेरा मियां तो गंजा हो रहा था, आपने बचा लिया। तो भाई गंजे लोगों को हम बचा रहे हैं गंजा होने से, तो भाई आप भी अपने मियाओं को अगर ऐसा मसला है तो उनके लिए तेल खरीदें भाई, केसन का।
0: केसन का तेल होता है।
1: हाँ बस वो तो औरतों के लिए तो वैसे इस्तेमाल होते हैं, मियाँ को भी कह दिया करें भाई अल्लाह ना हो कि आप कभी गंजे हो जाएं, बस ये भी लगाते रहे साथ में हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर, ठीक है जी? बहुत जी बहुत शुक्रिया सोनिया, आप भी हमारे साथ मौजूद थी। और यकीन कीजिए ये एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोफाइल एक्सेस। प्रोफाइल एक्सेस क्या होता है? प्रोफाइल एक्सेस के तौर पर कोई चीज कैसे इस्तेमाल की जाती है? एक दफा मैं एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, तो वो डॉक्टर पहाड़पुर के थे, अभी वो उनका ट्रांसफर हो गया, तो उनके साथ ऐसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा खलील मैं आजकल ना ये मेडिसिन यूज कर रहा हूँ ये वाली, तो मुझे पता था कि वो किस बीमारी के लिए है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो क्या आपको है ये बीमारी इस वक्त? तो वो कह रहे थे नहीं यार मुझे है नहीं, लेकिन मुझे लगता है मुझे हो जाएगी, मुझे थोड़े से आसार लग रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये तो मैं पहले दफा आपसे सुन रहा हूँ कि कोई बीमारी अभी आपको लगी नहीं है और आप उसके मेडिसिन। कहते नहीं ऐसा होता है हमारी फील्ड में कि जब आपको लगे कि आपको ये बीमारी होने वाली है तो एज ए प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस ठीक है ना, बीमारी से पहले जो आप ट्रीटमेंट करते हैं उसको एज ए उसको प्रोफाइलेक्सिस लेते हैं। तो प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर मैं ये टैबलेट खा रहा हूँ, तो मुझे उस दिन पता चला कि भाई कुछ चीजें जो है वो आप बीमारी से पहले भी खा सकते हैं अगर आपको डर हो कि ये आपको लगने वाली है बीमारी। ये डॉक्टर की कहानी। अच्छा, अब ये हमारा जो ऑयल है ना भाई, जो भी बंदा इस्तेमाल करेगा जिसको लगता है कि यार गंजापन जो होता है ना बहुत बुरी चीज है, बंदा बड़ा शर्मिंदा हो जाता है अगर गंजा हो जाए। अगर आपके अंदर ये खौफ है, मेल जो मुझे सुन रहे हैं, लड़के सुन रहे हैं ठीक है जनाब, या घर वाली खवातीन सुन रही हैं और वो समझती हैं कि भाई उनका अब्बू जो है बड़ी उम्र में जाकर भी गंजा ना हो, उनके भाई जो है वो बड़े होकर भी गंजे ना हो, तो भाई इस ऑयल को इस्तेमाल करें, हम आपको गारंटी देते हैं आपके घर के अंदर कोई भी गंजा नहीं होगा। अगर ये ऑयल आपके राशन में जाता है हर महीने, अगर केसन हेयर ऑयल आपके राशन में हर महीने जाता है, तो भाई हमसे आप स्टाम्प पेपर लिखवा लें कि आपके घर में अगर हेयर फॉल हो जाए या आपके घर के अंदर जो है मर्द जो है गंजे हो जाए, बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि ये इतना ताकतवर ऑयल है जिसके अंदर 17 अज़ा मौजूद हैं कि जनाब पहला काम ही इस ऑयल का ये है कि आपके गिरते हुए बाल बिल्कुल रुक जाएंगे। डेयर इस्माइल खान में जनाब हर जगह आपको मिलता है गुलशन कैश एंड कैरी, भाई एतमाद केसन एतमाद का नाम है डेयर इस्माइल खान का सबसे बड़ा स्टोर, जहां पर सबसे ज्यादा हर रोज ऑयल बिकता है, हर रोज शैम्पू बिकता है, हर चीज सबसे ज्यादा बिकती है। वहां पर जब आप जाएंगे ना तो वहां पर आपको पता चलेगा कि क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। आप जो जो भी इस्तेमाल करते रहे ना, अगर आपने अपनी कंपनी की वर्थ देखनी है ना तो आप कैश एंड कैरी के ऊपर जाए, क्योंकि वहां पर आपको क्वालिटी वाइज कंपनियां मिलेंगी, हल्की फुल्की

कमियां नहीं मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आपको केसन के 10-12 रैग मिलेंगे, एक नहीं, ऑयल का रैग अलहदा होगा, शैम्पू का अलहदा, फेस वॉशेस का अलहदा, सोप्स का अलहदा, स्किन टोनर्स का अलहदा, ठीक है जनाब, इस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम्स का अलहदा, लोशन का अलहदा, हर चीज का आपको सेपरेट रैग मिलेगा। ये हमारे ऑनर की बात है कि डेरस मिल खान का सबसे बड़ा स्टोर ऑनर करता है हमें और हमारी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है, अपने बहुत बड़े सिस्टम के अंदर रखता है और अपनी कैश एंड कैरी के ऊपर हमारी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि कस्टमर है हमारा, वॉक इन है हमारी वहां पर। तो जनाब आप कैश एंड कैरी पर जाएं, वहां पर आपको केसन का ये ऑयल मिलेगा, इसकी दो ऑयल, छोटा ऑयल 430 रुपए का, बड़ा 750 का, वहां पर आप खरीद सकते हैं। अगर आप यूसुफ चौक पर मौजूद हैं तो वहां पर जाहिद शॉपिंग सेंटर है, ठीक है जनाब, साथ में मजार वाली गली में उमर जनरल स्टोर है, वहां से खरीद सकते हैं। सीआरबीसी पर है तो महमूद जनरल स्टोर है, वहां पर वहां से खरीद सकते हैं। कोसे कजा जनरल स्टोर डियाल रोड पर है, वहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है बनू चुंगी के ऊपर कराची कॉस्मेटिक है, सुभान कॉस्मेटिक है, बलोच करियाना है, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट हमारे मिलते हैं। न्यू बनू चुंगी के ऊपर सनाउला हेयर ड्रेसर है, इतने अरसे से वो हमारा ऑयल ले रहा है, हेयर ड्रेसर है कि जनाब वो कहते हैं इतने सारे लोग मेरे ठीक हो गए, ठीक है जनाब, गंजपन खत्म हो गया। अच्छा, इसके अलावा डेरस मिल खान में अमान हरसेरा, फारूक हरसेरा, हाजी गुल जनरल स्टोर, राजा जनरल स्टोर, जितने बड़ी दुकानें हैं, शीश महल, ठीक है जनाब, केसन आपको मिलेगी जनाब, मेयारी प्रोडक्ट। ये मैं उन दुकानों के नाम उठा रहा हूँ जो छोटी मोटी कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं रखते, लिफ्ट नहीं कराते, और छोटे दुकानदारों के तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो ब्रांड रखते हैं अपने पास, वो ब्रांड से नीचे बात नहीं करते क्योंकि उनके पास एलीट क्लास आती है। जैसे ये शीश महल है गोमल मार्केट में, अल्फरीद कॉस्मेटिक गोमल मार्केट में, फैमिली शॉपिंग सेंटर मिया कमर्शियल मार्केट में, अमान अरसेरा, फारूक अरसेरा, सारे बड़े नाम, इन बड़े नामों के पास आपको केसन की हर प्रोडक्ट मिलेगी और ये गारंटी है हमारी कंपनी के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को हर वक्त ये अपने रैक्स के अंदर रखते हैं। लेकिन अब टांग के अंदर जो है हर जगह आपको जितने भी छोटे बड़े मार्केटें हैं, जैसे कि सदाम प्लाजा है, सदर प्लाजा है, यहाँ पर आपको हर जगह पर मिलेगी। बिलाल मार्केट में जो है नसीम जनरल स्टोर है जनाब, वहां पर आपको मिलेंगे केसर के प्रोडक्ट। बल्कियाज कहाँ पर है भाई, बल्कियाज जनरल स्टोर,

जी बल्कियाज चूड़ी एंड जनरल स्टोर, ये जनाब कहाँ पर है, सदर, हाँ ये भी सदर प्लाजा में है, तहखाना में इनकी दुकान है जनाब, ठीक है जनाब, सदर प्लाजा का जो तहखाना है यहाँ पर है, बल्कियाज चूड़ी एंड जनरल स्टोर, इनसे चूड़ियाँ भी खरीदें और साथ में केसन की प्रोडक्ट भी खरीदें, हर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है जनाब। पहाड़पुर तो सारा भरा पड़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, हर जगह पर पहाड़पुर में किसी भी स्टोर के ऊपर चले जाएं, छोटे बड़े जहाँ पर आपका दिल करता है वहाँ पर जाएं और केसन के प्रोडक्ट हासिल करें। मैसेजेस आप लोगों के हमारे पास मौजूद हैं।

जनाब सलाम टू, अच्छा जी स्पेशल सलाम टू उस्ताद जी, ठीक है जनाब स्पेशल सलाम टू उस्ताद जी। अच्छा जी कॉल्स अभी मत करें आप लोग। दुरे अदन द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, वेलकम टू मेरा अपना फेवरेट शो विद आरजे खलील ताबी शवान। एंड कैसे हैं आप एंड आपके फैमिली मेंबर्स जी? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल जी खैरियत से हैं, ठीक है। और कहते हैं कि क्यूट उसरम ठीक है, बड़ा हो गया है अब तो, मेरा गिफ्ट उससे जेबे तन किया। आप यकीन करें दुरे अदन, मैं उस दिन सोच रहा था कि अब तो उसेरम बड़ा हो गया, अब तो जो अरूबा ने गिफ्ट भेजा था सूट बना के भेजे थे, आप तो उसे आते होंगे। आज मैं उसकी अम्मी से बोलता हूँ कि भाई इधर छुपा के रखे हैं तुमने उसेरम के सूट, वो निकालो और इस ईद के ऊपर पहनाने हैं, ठीक है जी। तो आपका गिफ्ट इंशाल्लाह ईद के ऊपर पहनाएंगे और फिर उसकी पिक्चर लगाएंगे टिकटॉक के ऊपर, देखिएगा। और अब तो मेरा गिफ्ट उसे जेब तन करा दें जी जना। एन सोनी आप ही और महानूर सिस्टर आप कैसे हैं? आप दोनों से मिलने को बहुत दिल, बात करने को बहुत दिल करता है, पता नहीं ये होगा कब होगा। अनुसार जी आज मेरा दिल कर रहा है आपसे सवाल करने को, इजाजत है क्या? हाँ हाँ हाँ बिल्कुल जी। उस्ताद जी मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसमें न गोश्त है न खून, उसके बावजूद दौड़ती है? पूछ रहे हैं, अच्छा कुछ टाइम तो देना, इतने थोड़े से वक्त में कैसे जवाब दूंगा। स्पेशल जी सोनिया भी मानूर के यू ही ना इरम शहजादी एंड फातिमा को। चलो मैं सोच के बताता हूँ लड़की तुम्हें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम केटी, क्या हाल है? अनीसा हूँ, शो अच्छा। अच्छा जी इतने दिनों बाद जुर्माना लगेगा। हेलो उसकी तरह केटी, केसन की जो डील टांग में लगी है आपने वो बता दो कहाँ से मिलेगी, और मैं केसन हेयर केयर जोड़ी इस्तेमाल करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है मिला मुझको, और मिल्की सोप भी इस्तेमाल करती हूँ, वो बहुत बेस्ट है। लास्ट में महानूर को और सब सुनने वालों को सलाम। 7 किस्म के केसन के साबन है, कोई एक भी उठा लेना आपको लव हो जाएगा, कोई एक भी उठा ले। तो अनीसा इस्तेमाल करती है केसन का मिल्की सोप, जो पहले 1000 के ऊपर दो चीजें फ्री थी वो हो गई है डील खत्म। अब जो ऑफर लगी है वो है 1000 के ऊपर जाफरानी क्रीम फ्री, ठीक है जनाब। तो आप जरूर लीजिएगा और 320 रुपए की क्रीम हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन ये ऑफर सिर्फ टांक में है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब सुनने वालों को सलाम। अजहर पहाड़पुर से सलाम भाई, आप कैसे हैं? तो भाई बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल जी एवन जबरदस्त। और शैम्पू की तो क्या ही बात है भाई, आपके शैम्पू की तो क्या ही बात है, सोना है सोना जी जनाब। जब आप यूज करेंगे तो शैम्पू ऑयल हर चीज बहुत आला किस्म की। हमजा केमटा हमारे साथ मौजूद है, मूसा वाली पिपला से जो चीज आसानी से मिल जाए अक्सर लोग उसकी कीमत भूल जाते हैं, मोहब्बत वक्त हो जाए। सबको सलाम कह रहे हैं आमिर हुसैन का। आप फरमा रहे हैं कि नींद की कमी की वजह से और परेशानी यानी टेंशन की वजह से बंदा गंजा होता है। मेरा ख्याल है कि औरतों की वजह से बंदा गंजा होता है, वरना तो औरतें भी गंजी होती। कल मैं एक बयान सुन रहा था, एक मौलाना साहब कह रहे थे कि जब मियां और बीवी आपस में लड़ते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि कसूर मर्द का होता है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा है ये मर्दों के खिलाफ कौन बंदा खड़ा हो गया। तो उसने कहा जब मियां और बीवी की लड़ाई होती है तो कसूर मर्द का होता है। अच्छा मैंने कहा पूरी बात तो सुन लो, इसको कहता क्या है जना। तो आगे कह रहा था कि यार जैसे कि आप जानते हैं कि औरत जो है नाकिसुल अकल है, उसकी अकल तो नाकिस है, ठीक है, उसे परफेक्ट तो कहा नहीं गया, ठीक है जनाब। और कहा जाता है कि औरत की अकल जो है टखनों में होती है, यानी कि नाकिसुल अकल है, मर्द जैसा अकल उसके पास नहीं है। तो कहते हैं मर्द बहस ही क्यों करता है भाई नाकिसुल अमल के साथ। मर्द वीर नाकिसुल अकल औरत के साथ बहस ही क्यों करता है भाई, मर्द के साथ बहस करे ना, उसको पता है उसकी अकल के बराबर ही नहीं है। तो मुख्तसर किस्सा भाई, मियां बीवी लड़े तो कसूर मर्द का होता है, ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि मेरे ख्याल है कि औरतों की वजह से बंदा गंजा होता है, औरतें भी टेंशन ही देती हैं। आप शादी शुदा हैं, आपको नहीं पता औरत टेंशन नहीं देती। आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं समझ गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी, हाजिरी लगाते हैं, आपका शो नाइस है, आपकी आवाज मस्त है आपकी तरह। सर जी केसन ऑयल सोना है सोना, इस ऑयल से मेरे अब्बू का गंजपन खत्म हो गया है, मेरी तरफ से आपकी शहजादी जी जनाब। राजा कपूर की कॉल आ रही है, अच्छा जी शहजादी कश्यप जैनब शहजादा शाहजैन और मिठे हुसैन को बहुत बड़ा सलाम, इरम शहजादी पहाड़पुर से। अच्छा जी टांक वाले सोच रहे होंगे ये 3 नाम कहाँ से आ गए, हुसैन शाहजैन
है जी ना, उस सहरा में कशफ, तो भाई ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है जी ना। बड़ा बड़ा बेटा है मेरा शाजैन, उसके बाद कशफ है, ठीक है जनाब, उसके बाद हुसैन है, और उसके बाद उस सहरा में अल्लाह हयाती करे उन सबकी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, दिलराज है जनाब, कहती हैं कि टांग से हूँ और मैं आपकी वेट कम पेट कम को इस्तेमाल कर रही हूँ, लड़की जल्दी से वजन अपना कम कर लो, ठीक है जरा, फिर कॉल करके बताओ असद अंकल की तरह कि भाई कितनी हमें शहादत चाहिए, भाई ये सारी शहादतें जो हमें मिल रही है ना माशाल्लाह, शिफाय दर्द की मिल रही है, तो दिलराज हमें कब शहादत दे रही है जनाब वजन कम होने की। वैसे वेट कम पेट कम टांक में बहुत ज्यादा बिक रही है, आज भी उनको स्टॉक गया है और लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं जनाब, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा है। वेट कम पेट कम जो हमारी फकी है उसको खाने से कभी भी यकदम आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, अगर एक चम्मच आप डेली लेते हैं कभी आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कभी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी आपको दिल का मरीज ज्यादा नहीं होंगे, ना ही आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। एक मैं कहता हूँ कि कामिल शिफा फकी है ये जो वेट कम, अक्सर लोग हमें कहते हैं कि इसका नाम चेंज कर दें आप, ये तो आपने वजन कम करने के लिए बनाई है, लेकिन इसको जब खाते हैं तो भाई इतने ढेर सारे फायदे मिल जाते हैं हमें, तो भाई इसका नाम वेट कम पेट कम है, लेकिन सबसे पहले ये आपका हाजमा दुरुस्त करती है, आपका हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप ओवर ईटिंग छोड़ देंगे, यानी कि आपकी भूख कंट्रोल करती है। वेट कम पेट कम जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे, जैसे कि दिलराज खा रही है, दिलराज क्या पोजीशन है, तीन रोटियों से गेम कहाँ पहुंची है, दो या ढाई तक आई है या नहीं आई है, अनिया जी आ गई होगी और इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर देखेंगे कि ये करिश्मा टांग से हमें दिलराज बताएंगी कि 15 दिन पहले जब मैंने वजन किया तो कितना था, और वेट कम पेट कम की जब एक फक्की मैंने खा ली है तो वेट अब कितना है। अपने गिरवी जनरल स्टोर से हमारी ये प्रोडक्ट वेट कम पेट कम खरीदी, अगर आपके ऊपर एक्स्ट्रा चर्बी है, बाल गिर रहे हैं तो केसन हेयर ऑयल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, दाग दबे छाए हैं तो केसन नाइट क्रीम, ग्लूटावाइट क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, चेहरे को फ्रेश रखना चाहते हैं तो हमारे फेस वॉश लवली फेस वॉश गो पिंपल फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए, या अगर आपके घर में कोई बंदा बहुत अरसे से दर्द में मुबतला है तो केसन शिफाय दर्द का इस्तेमाल कीजिए। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने कहा।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Rocking with the band. 88.4.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

बिल्कुल प्रोग्राम अभी ठीक थर ढोल से बजे भरे और इन्हें मतलब द ईद ना मक्से बा सिर्फ दा सर तरीके ना आखिरी प्रोग्राम भी ईद ना बाद चुकुन ब्याह प्रोग्राम और शेड्यूल चुकुन दे शेड्यूल मुताबिक कीजी जका चे ईद सीखी हूं देखे ना 27 मई बांधे वे 9-27 मई बाने बुध ब्रज हर द्रिमी यानी मतलब ब्याह बद ईद प्रोग्राम होना भी ठीक।

जी बिल्कुल, फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो चाओ द कम्स इन अ मैसेज खड़े दे फॉर 8531 ने बिल्कुल तुझे मैसेज कवली छे फॉर 8531 ने बिल्कुल मैसेज कवली छे प्रोग्राम से सो बिल्कुल कसी छे मैसेज पर दुर्बाने सो को दिखम देना दे जी बिल्कुल फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो सलाम वजीरों के खान कैसे हो ठीक हो मौसम कैसा है बहुत टाइम बाद आई एम जोहा वजीर फ्रॉम डुमेल खजी वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मौसम हो माशाल्लाह डे जबरदस्त है बारान शुभ दे थैंक यू सो मच मैसेज को बोले डेरा डेरा मनना नेक्स्ट वही कहना चाहिए वैसे तारिक आज हमारे डुमेल का मौसम बहुत अच्छा है ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल अच्छा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मेरे जैसे अच्छा सच सोचा आपको भी बता दो मौसम के बारे में आपको पता नहीं है होगा आओ खाना बिल्कुल दाह हो रहा ठीक तो ना बस डुमेल हो तपा दशता खाली तो मैं काल कड़ा हुआ ढेरा मनना जो वजीर मैसेज को बोले नेक्स्ट विच अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई कैसे हो कैसे हो मेरे भाई बहुत टाइम बाद मैं आयशन सारा फ्रॉम बन्नो आप तो ना ना ना सही बस दस वीक है ना डेरा मनना मैसेज को बोले बस मसरूफियात भी सही दो मसरूफियात वो जबान है ठीक सो डेरा मनना आयशा और सारा मैसेज को बोले बनो ना

और वही कहना छे फरियो तारिक भाई, मेरी दुनिया में कोई चीज ये क्या है, सॉरी समझ में नहीं है यार, पता नहीं लिख रही था, नहीं बस तुझे देख के लगता है कि सब अच्छा है। मैं आयशन सारा फ्रॉम बन्नो डेरा मनना, थैंक यू और मैसेज के वाले डेरा डेरा मनना। वैसे तारिक आपको पता है कि मैंने एसएमएस कब किए थे, छुट्टी ईद में और अभी बड़ी ईद आ गई पता है, क्योंकि मेरे पेपर थे और पता है छुट्टी ईद के बाद मैंने आपकी एक शो भी नहीं सुनी क्योंकि फ्री नहीं हूं। अच्छा जी सही बिल्कुल हम रेडिक तबास मसरूफियात चुकम दर्जी से नगर के डेरा मनना जोहा वजीर मैसेज को बोले अवैसे सबा सबेरा बाद ना सुन करता वो लगे वा शाह संदरा दरता लगे वो लश्की इंतजार वका डेरा मनना।

और यही कहना चाहिए, ये आपके लिए लम्हा लम्हा गुजर जाएगी, कुछ दिनों के बाद ईद आएगी, अभी से हमारी मुबारकबाद ले लो वरना फिर ये मुबारकबाद आम हो जाएगी। बिल्कुल सही, जो हजीर मैसेज करें फिर मनना, थैंक यू। सलाम टू जनत जलाल फरिश्ता मलिक जवेरिया इवान मिस रोशनी सोनी हान चोलो तो सलाम देवर हजर डेरा डेरा मनना। थैंक यू सो मच मैसेज के बोले ढेरा ढेरा मनना प्रोग्राम से मैसेज को। और बिया मैसेज कर देखना वे कहना छे, अच्छा जी बिल्कुल सही हो रहा था। और वही कहना चाहिए, हजी सही था बिल्कुल, तुसे मतलब कचर तक दस के तुसे और वही कहना चल तक रेडियो फ्रीक्वेंसी चुके आवाज नजी रेडियो फ्रीक्वेंसी आवाज अल तक नदरी मी तुसे पदे बने हाँ वरदायशी ने www.amanradio.com ठीक छो www बोली के गूगल पर क्रोम के बवेर के www.amanradio www.amanradio.com ठीक छो www.amanradio.com दा तुसे चिकल हाँ पर गूगल के वेर के नो तुसे मखे तबे लिंक रोशी ये बने बक्री को के ब्या बदरता द्रे चैनल पके रोशी ठीक छो इन अमन रेडियो लिंक बदरता रोशी बने बक्री को के करक टांग को बटा ग्राम बदरता पके रोशी नो पकरक बने बक्री को के सफा और क्लियर बिचिकम दाई तुसे दा सुमर शुगो नी दा वरदाई छे हर चरत के वरदाई छे का तुसे इस्लामाबाद के होए कराची के होए पेशावर के होए चरत के होए तुसे सफा और क्लियर स्ट्रीमिंग पर तो बने वरदाई छे।

हाँ जी डेरा मन्ना, थैंक यू सो मच मैसेज के वाले जोहा वजीर मैसेज करा है। बस बिल्कुल गोरा जिंदगी के चुकम दे हर किस्म हालात दरदरी में हो अक्सर प्रोग्राम के दाह बर के भी कहना हालात बिल्कुल मुकाबला कवे दा बने में चेहरा मुबन ने दासे मुश्किल हालात रोक लल या जिस तरह के हालात ही मुबन रोक लल नो जिंदगी गोरा जिंदगी दा हिसाब रिक्शा चावने वा मुश्किल हालात दरदरी में चावने मतलब शहलात रुबान रजी हो हालात मुकाबला बकवे हार वो बिल्कुल न बने बद वगाने बदर तक कभी हमेशा ठीक शो शफेसल फ्रॉम बनगुल एडवांस ईद मुबारक मजिगर डेरा गलई तूफान और बारान वर्षों डेरा मनना शफेसल बनो ना दे मैसेज बेको बदलते यहां दा पोजीशन हो खैर गलई होना हो बगे वो बारान चुकम दे हम वर्षा वर्षा ऐसे तूफान चांदे वो डेरा मनना हिदायतुल्ला फ्रॉम बकरा मंडी बन्नो सलाम टू यू एंड वेलकम टू द शो डेरा मनना हिदायतुल्ला बन्नो ना द मैसेज वक डेरा डेरा मनना और व्या विकना चमो तो दाईवा संदर अप लेगा ठीक शसो कोशिश करो डेरा मनना मैसेज को बोले यो जहान बनना प्रोग्राम से द मैसेज वक हिदायतुल्ला बन्नो ना डेरा मनना और यही कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम सुबह दोपहर दे बरानी सुबह दोपहर तारिक वजीर दे बरानी मौसम के दरताप खेर अगले वायों संग ये खजील हमदला बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल खैर खरियत है अच्छा सही हाँ जी डेरा मनना ग्रेट मलिक मैसेज करे रहे हैं

और रोजिहान भैया मैसेज करे देख रहे हैं अच्छा जी तारिक भाई ऑल फ्रेंड आप एडवांस के ईद मुबारक और टांग के सबसे सिर को सलाम ठीक छोड़े रहे ना वालेकुम अस्सलाम।

અચ્છા જી, વેચી તારીખભાઈ દુમરા ઢેર ગોડા માખરા સહી બેર મનના થેન્ક યુ યો જહાન મનના. और रोशिहान भी मैसेज करे देवे छे माई सलाम है और एडवांस ईद मुबारक हो छुट्टी महवेश छुट्टी मरबा छुट्टी सारा गुलालई और खान मलकिल मसई तारहान सुनिहान ग्रेड मलिका मारी अरमान आदि बहार फद मुजीर हामना अशना आईना हचक अलीना हचक गुलशन जलाल सद वफा डॉक्टर आयजा मिस रोशनी नीलम हचक सनम हचक आसमसीप اور زیمل منت خچک حفظہ ٹیک اور دین لباس ماہا ہٹیک فرشتہ مناہل اجالا ہٹیک عائشہ انسارا بنو اور ٹول ٹول ٹول لسر تسلوم ڈیرا مننا

बता सीधी करना चाहिए सॉन्ग हंस चुकुम दीदा हाँ दो प्रोग्राम हिस्सा दे आवेच आई एम डॉक्टर सलमान फ्रॉम सब डिवीजन वजीर बन्नो स्पेशल सलाम टू यू शी इज वेरी नाइस डेडिकेटेड टू यू

जी सही मारी अरमान मैसेज कर डेरो मने ना विषय तारा के जीज मैं हूँ सन हम दिल्ली करे तख्ते नसरती ना देनो मने खुदे पूरी नशुर डेरो मने ना यो जहान मने ना वैसे रुशिहान अगेन तारिक भाई स्वीट राज भाई जानी था यो करोड़ यो लाख सलाम ओके गुड नाइट तेरा मन है बिल्कुल शो और भी करना सलाम मदे कबल कड़े भी सो बिल्कुल टाइम हो खत्म शुरू दिया वो दे सॉन्ग सरा वज़दर ना गोड़े इजाजत इंशाल्लाह का जिंदगी वा नेक्स्ट मतलब प्रोग्राम की बिया मुलाकात दर तरकी जी ओके दाईशी सो रोज बाद ही नहीं मतलब सभा या बोलर या बोलर मतलब सर लोड से खली तो हम ठीक सो अभी वो तो से मतलब मुख्तलिफ टाइम मैंने चिको माँ प्रोग्राम ये मैंने तो से प्रोग्राम और हुई सही दो नो बिल्कुल दे सॉन्ग सर इजाजत तो ना गोड़ो इजाजत कम सॉन्ग सर इजाजत ना गोड़ो खजी द दे सॉन्ग सर बिल्कुल तो ना गोड़ो इजाजत

0: और रवि जी भाई कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले करो। इट्स मी ज़ोया फ्रॉम टांग रोशी को एडवांस ईद मुबारक फिर मुबारक डेरा मनाना बिल्कुल बंदा तो से टोले बनो माने ठीक छो द सॉन्ग
1: मत जानन पलास गेडी वर कड़ी दिना
0: सो बिल्कुल इजाजत सबूता में भी मुलाकात होशी बल्कि सबूता मुलाकात नो नेक्स्ट शो के दरसरा इंटरटेनमेंट शो के द्वारा मुलाकात कीजिए फरेवर दुआगान की आसत है द टू लो डेरा डेरा वनन चा प्रोग्राम से मुक्त मैसेज बको और चा प्रोग्राम से कॉल को दिल में चा प्रोग्राम हम शेष रबो रे दो लगे टू लो डेरा मनन के भी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के दरसरा की जुल्बिया मुलाकात ओ दिन लवा ईद कम शुरू ला हां तयरी जी भाई इंशाल्लाह नो आवे हां दरसर शेर कही बा ओस बता सुना सकोड़ा इज्जत मंगे दुआ गानो गया सदे सो द लो ये लवा।